0: प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन जन्म चरण प्रहीन दस कलंक रूप पार अंशित तेज उपार अंश तेज उदान जरूर तुरंत सब जगत जग ब्रह्मानंद सब जगत भगत ब्रह्मानंद दस चार चार उठान चार चार था कलंक रूप पार सब लोक लंक रूप पार कल काल कर्म विहीन सब कल काल कर्म प्रहीन अनखंड तुल प्रताप सब धन जलाप ब्रह्मांड सब करम फोकट जान सब धर्म ने फोकट जान बिन धर्म नाम आधार सब करम ब्रह्म विचार सब करम फलम विचार तो प्रसाद लगा चंद जले हरि थले हरि जले हरि थले गिरे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे हरि उपले हरि जते हरि रे
1: अभूत तुम्हें

0: प्रसाद
1: जैसे
0: ताप कैसा है जो पाई है ताप नाग साहब जो हमें गई है ना काल सदा है जाने के लिए जो पाई है जाप दे पूत न जो जीव है तो ना बचर पूत न दे तो ना बगे लुड़े ते जो पे नारायण पाई है तो न दे तो कमा सा छि डो बाबू कर ताप में जो लोग का कांट की पर तक में चल के बस की पूज कर बंदा तरप ताल के पास के पूजन कर को भयो मंडे असन्यासी को जो को मंडे जाने को जो जो को मंडे तो वक्त राम जी नाम तो विमान को याद सब एक गप प्यान को याद सब का ताक करी मन को याद करही मन को दो सुनो सुनो बे को दे बोल प्रभु बिदन को रे के को से मुसल पे मा को दे ए दे मन सब रो सब पे के जो दे ए को सब रूप सब पे ए हो राम जी दसो पूजा ने बाजो मन सब पे ए पूजा ने बाजो पे मन सब दे के का दे ने राज को राम को रे हिंदू ने अरे अरे अरे संत के पे को प्रभाव है अरे अरे देश संत के पे को प्रभाव है एक न एक कान एक ते एक कान का एक बात ने जैसे एक नाद दे तरंग कुट उपजन से पमान के द्वारा रंग सब उठ आवे ही था के सब स्वरूपान दे अबुद भूत के गढ़ होए तां रूप के उपयोग सब भूत ही मिट सब नहीं के उपज सब के पाछ पाछ के उन को करते भज के पाछ पाछ वो जो उन को पाछ उठ जाते के के बन हवे बीज उपज को करे के बन के तक पाछ चाहे पुकार के बन जाए के कर बचाए डाल का के थर जल हां के कमर का गगन के काल के बनाए सब का दे जवाल के बीच पाछे तेज में तेज जस तेज जिन पाछे तेरो पाछे सब साहि में दिन माहे ते ऊपर सब ताहि में समाहे भूखत फेरत के तेरो वत मरत के जल में डूब तेरो ते आर में जल जल में डूब पतंग तेरे के दम दे नाम का दे वसी के तब तो होए दासी के बिना माहे ने वरत तब दासी के प्रकार वाले साहि के दबू में गड़त के सू अब तड़त के दिन तू फटो भरत सू आ के जन्म में उठ तू के जबर में रह के दिन के मन ते बिन न लख जहरी मरत के हाय के बिन जग जा सुबत हारे देवता विरोध हारे दान उदंड बोते मारे विरोध प्रभु दहारे बटे बुसे कर सुदाले जम्मो न लगाए मचे चुवा सहर पूजन हारे लाहे चारे मारे लापुसे हारे पाहन कंडाए हारे लोरनी नाए हारे मड़ा मंडरे कुमार मितन दगाए हटे मटा दी दी कर बेतारे लंकर वे भजे छे हरे गिना सब पर चंदारे बंदे के तब पर किनारे वापस दी पंडित हारे तपसी तो प्रसाद
1: जो हंगा जो नि ना पर ना दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दरा दर
0: कई अगन होत कई पवन हार कई गत को अमृत को वहार जाय कर सत को अमृत को वचन इत कदे वह पत छ छ में कदे वह पत रण गंत बरी कई वेद सागर विद्य अंतर दिवरी तो बेरी तो के रात करम के हूं हम बेरी तो के रात करम के हूं अगन हो कई देश दे सभा कर अंत कई दे दे दे विद्या बड़ अंत कई करते अंत के अंत दे चार नहीं न कर दर सब यत्न पार नहीं न कर तीर कई दिन पर न दो परम कई अगन हो तीर दे परम कई कर जति विद्या दे चार नहीं थे ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਾਨ ਕਰ ਦੋ ਮਨ ਜਗਤ ਦਾਨ ਬਿਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਲੀਨ ਬਿਨ ਦੇ ਹੋ ਸਰਮ ਧਰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਲੀਨ ਬੋੜ

पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमापद भेद कते वेदोचारे रोज ही राज बिलोकत राज करो रोहान की रोज नटार है कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे हंग भेव न भेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसे थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यो किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाध द्वेक सो भूत भवेख भवान भय है अंत विहीन नातम अपदाग दुख छिद्र छह है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोतन नेह विरक्त के है अच्छा है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद मापतल है रोगंते और सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत घावत उतन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर पा

सबै बजहारे भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साख न शोक न संग तिहारे आदा न तगाद बेगद वैख जप्यो तिन्हि कुल तारे तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेष बोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासतरन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है जुद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय द्यावे गोर गर तेज गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना कि तेग बांधे आर बके आर बी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर देड़ वैत लंगे पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आगे में चलत है रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीस ने आवे तिब्बती थे आए दुख देह के दलत है जिन्हें तोह जायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अवेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीन और काहू पे नदीन सद दीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहि चिट्ठी की निंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते सस राशि किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महाधीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है करते हैं विचार पैना पूर्ण को पावे पार ताहि ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानी है अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी के कमानी है जंत्र हूं न जात जा की बाप हूं न मायता के पूरन प्रभा की सुझटा के अनुमानी है तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हूँ कतार है के राजसी कुसार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ का रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को गुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के शत्रुण के साल है के मित्रण को बोकत है के वृद्धता की बासी है जो हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूं का घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है न नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाइये न पार पारावार हूं को पार जग की जित विचार जो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हलब विध्याव पूर्वी न पार पावे असत्य नाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नाथ अद्वय अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया ध्रुव छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छा

छ कैसे छतरा नेर छपाकर कैसी छब कालिंद्र के कुल के हंस निश सिहारू महिरा सिंह सेनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंधरूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के जम्पासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसासी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमासी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदागढ़ जून जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के प्रतंगी तेरे गीत गायत है बकरी गंधारी गोर गखरी कर दे जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर मैं विराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र दया तापी नाथ की

गोविंद सिंह बाहो बाहो गोविंद सिंह कलगिया वाले गोविंद सिंह बाजा वाले गोविंद सिंह फौजा वाले गोविंद सिंह चोजी प्यारे गोविंद सिंह जी

कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर माड़ी कुर बसनहार कुर सोयना कुर रूपा कुर पननहार कुर काया कुर कपड़ कुर रूप पार कुर मिया कुर बीबी खप होय खार कुर कुड़े ने हलगा विसरा करतार कृष्णार कीचे दोस्ती सज चलनहार कुड़ मिठा कुड़ माख्या कुड़ो बेपुर नानक खान बेंती तुलवाज कुड़ो कुड़ महल।

0: कुछ करना सपर महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं।

0: नानक मेरे शरण काए ग्रस्त दवा जो जो सरटाए ज्ञान बुझता है सतगुरु संतो का धर्म रथवा त्रत जत का जो रथवा द्वापर अत पे का सतगुरु रथवा कजगुरु रंग का कूड रथवा महला पहला
1: साम कहे ऐसे तन वर स्वामी सज में आचे साच रे सब को सुषमा विधि करया भरपूर राम नाम देवा मैं सुर नाय ले प्रास जाना न तो मुकंदर पाए जोज महे जोर चले चलन कान कृष्ण जात भया पार जात गोपिला।

मिली कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान जंदी आई इन नित्र जगत ने हलिया कसम छोड़ तुझे लगे डोबे सेवन जारिया सतगुरु हो।

पौड़ी साहब हुए दयाल कृपा करता साई कार कराए से सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मनिए होवे प्रमाण ता किसमें कामल पाए सी खसमें पावे सो करे मनु।

छुरी बगाए तिन कर ताक तिन कर ब्राह्मण पूरे नाथु न ब्याव कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे आहार श्रम धर्म का डेरा दुर नानक कुड़े भरपूर मत ऐट का तेड़ दुर्ग हत सूर्य जगत का साई नील वस्त्र पर होवे परवान मले।